हर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है। उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए बस दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई दे है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। तो जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है सुनते ही रहना। अगला भजन जो आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आज शुक्रवार की भजन यात्रा के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर माता जी का भजन बस आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए। चलिए प्रोग्राम में एक और सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अभी बार हम आपको ले चलते हैं शुक्ला की आवाज में ये सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ही सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। चलिए अब की बार उदित नारायण की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हमारी सभी और सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

विवेक की आवाज में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: आरती भजन बसपुर गांव में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो यहां तक भजन यात्रा प्रोग्राम आज शुक्रवार का दिन आप सभी सुनवालो की सेवा में बस पेश की गई है। आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से आप सभी सुनवालो सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti.

सानु और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हिट स्टोरी नंबर दो उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनने वालों फिर से बॉम्बे चले प्रोग्राम में गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा अलका याग्निक एंड बाबू सुब्रियो की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

अलका याग्निक और बाबू सुब्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। और फिल्म का नाम खुद

आज मरीज पैदा हो चुका है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज शुक्रवार का दिन 12 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को अनहिल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। लाइव शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बारिश का मौसम है, भीजा भीजा सा मौसम है हॉलैंड देश के अंदर में, लेकिन फिर भी सुनने वालों मौसमी समाचार की ओर देखा जाए तो आने वाले दिनों गर्मी सा मौसम बस आने वाले हैं और खासतौर पर आने वाले सप्ताह काफी गर्मी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और हजारों हजारों सुनने वालों इस प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को बस सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय की ओर। आप सभी को स्वागत किया जा रहा है शुभ सुबह शुभ दिन के साथ गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। तो चले मिलकर सुनते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: दिवस प्रोग्राम भी पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

telefoonnummer geven. 030-262-6611. Our Radio SBS website radiosbs.nl. किशोर कुमार के बाद मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी के आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम गंगा की लहरें।

लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अबकी बार मोहम्मद रफी की ओर, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। उसी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, मोहम्मद रफी के बाद हम आपको ले चलेंगे दिलीप कुमार और विजयंती माला का एक खास फिल्म की ओर। गंगा जमुना फिल्म का नाम है, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी फिल्म गंगा जमुना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। 1961 का फिल्म है, 1963 का फिल्म, फिल्म गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया है। तलत महमूद जी की आवाज में अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है, से रामचंद्र का संगीत पर।

पुरानी फिल्म घराना का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर, अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम घर। किशोर एंड लता।

अच्छा जी की आवाज में ये खास गाना भी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। किशोर कुमार।

सारे भले ढींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए धूम धड़का चील कपट्टा बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे बाप दौलत लूटा हाथ

0: बाले इकड़े बाबा हो पाली बहु इकड़े बाबा लो पाली बहु बा तक तक पक हम बा हम बा इकड़े बाबा हो पाली बहु इकड़े बाबा लो पाली बहु बा लग तक तक पक हम बा हम बा
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए आपने सुना किशोर कुमार के बाद हेमंत कुमार प्रोग्राम में।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता जी की आवाज में एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: 10 बजकर प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुन वालो रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शुक्रवार का दिन 12 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मौसम आज का थोड़ा बदली बदली सा मौसम है, फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों है बस रेडियो SBS का ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं, खासतौर पर इंडिया भारत देश में भी, जहां पर अनुरेश हमारा प्रोग्राम इंडिया नोएडा में बस सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, वेलकम और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम 16 साल और ये खास गाना इंडिया भारत देश नोएडा की रहने वाला अनुरेश ने मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: यही तो है

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई 16 साल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खास गाना आज की ये प्रोग्राम में सुनना चाहते थे इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वालम अनुरेश, अनुरेश का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: ख्याल के।
1: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म गंगा जमुना, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में अपनी बार पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है ओ छलिया रे छलिया, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई एक फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया, गंगा जमुना फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। 1961 का फिल्म 1961 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले शमशाद बेगम की ओर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म मॉडर्न इंडिया की ओर।

रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्म बॉर्डर इंडिया, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार फिल्म राम और श्याम की ओर, मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में।

महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बस पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना फिल्म लव इन टोक्यो। उसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना लाया गया है, मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी लव इन टोक्यो।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेडुट्रेक से हॉलैंडी से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश और लता मंगेशकर आपके

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले फिल्म नागिन की ओर। स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ओ जिंदगी के देने वाले।

स्वर्गीय हेमंत कुमार, हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बजती है। इसकी गई पुरानी फिल्म नागिन का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS की सीरीज आज की ये प्रोग्राम में ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में पेश हुआ है। महेंद्र कपूर और आशा प्रोग्राम में, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में जो पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता मंगेशकर की ओर। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की ओर। फिल्म का नाम दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का अबकी बार ये गाना पेश।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम चले अब की बार मन्ना डे की ओर। और मन्ना डे क्या

0: बनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी बनवड़िया तो
0: कन्या उड़ उड़ बैठी बनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले ली।

हर रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और अलका जे के आवास में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

चौहान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चले प्रोग्राम में अब की बार हम

क्योंकि अब में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

ट्वेल्व की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032 62 66 11।

hier en dan. आज भी ये बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अपनी बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर उत्तराखंड से, हॉलैंड देश से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी सालों से। राहत फतेह अली खान एंड हर्षदीप की आवाज में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का नाम।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, अब आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी। हाँ, उसी फिल्म का एक गाना किशोर एंड लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। चले अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, किशोर कुमार और फनी की आवाज में।
1: प्यार कभी कम ना करना सनम।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन शहरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में, इतना भी ना चाहू मुझे कि तुमसे दूर ना रह सकूं।

सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में। कितना सुकून कितना आराम साजन की बाहों में, फिल्म का नाम साजन की बाहों में, उसी फिल्म का गाना आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जरूर प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना कुमार सानू जी की आवाज में। ये गीत

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म सावन की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है, कुणाल गांजावाला की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किया बांसमी ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम सावरिया, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए प्रोग्राम में एक पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है साथी, लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना रेडियो SBS की सरिये।

लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा करता हूं कि फिल्म साथी का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर की आवाज में।

फिल्म का नाम दहलीज, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालो रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

मोहम्मद रफी और खास तौर पर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है। गाना होगा फिल्म का नाम दो दिल, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फॉर हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन नॉट ऑल टाइम सर्फ माना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

0: लंका लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

सोनू निगम, अलका याचिक और कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में बस आउट द फिल्म, मुझे कुछ कहना है एंड आउट द फिल्म काबिल कौम काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वॉज आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी. Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkeleher via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंग दोर तुषार जोशी, गजोंग दोर अलका याचिक कम तुत फोहत लीजिए इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।

पिया तू अब तो आ जा वास आउट द फिल्म कारवा एंड आउट द फिल्म जानम समझा करो कौम सबकी बारात आए डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको रजा जी ले जाना दिल्ली देश को समुद्र अलका याचनिक।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी। ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Keleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजादोर जुबेन नौटियाल, दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेदर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कोम तत लीजे मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसाओ दूर जुबे नौटियाल कॉम्त होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन एतिस का अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैयार वारस आर डेट। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

जैसे परी, ये सुबह मस्त भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एंड कॉम्ड आउट द फिल्म वक्त। गाँव we daar verder met uit de film Gunjan Saxena. Gezongen door Rekha Bharadwaj komt Dori Tut Gaya.

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कुछ रपट जाए तो हमें ना भुलाइयो, इस अवध फिल्म नमक हलारन इस गसों दोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh, Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसैनुद्दीन जगजीत सिंह एन अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sipne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara si baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।